0: புத்தம் சரணம் கச்சாமி, தம்மம் சரணம் கச்சாமி, சங்கம் சரணம் கச்சாமி, அஹம் வந்தாமி சர்வதா. தானம் ச தம்ம சரியா ச யாத்கனம் ச சங்கோ அனவச்சானி கம்மானி ஏதம் மங்கால முக்தமா. சவ்வே சங்கோகி சரண் கொச்சி. দান করা, মানুষের সেবা করা এবং সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী পোষণ করাই উত্তম মঙ্গল। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, দুঃখমুক্ত হোক। সাধু সাধু সাধু।
1: হাতে খড়ি আর বইয়ের পাতা নয় কবথা কোনো, শৈশব মানে রঙিন আশা, ভালোবাসা যেন। সুধি মণ্ডলী, অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ডক্টর রওশনারা বেগমকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।